0: और गाजर की पट्टियां तैयार करेंगे। खुश्क शीता के मशरूम्स को पानी की काफ़ी मकदार में पूरी रात के लिए भिगो दें। अगर आपके पास वक्त कम है तो उन्हें 40 डिग्री सेल्सियस के गर्म पानी में 30 मिनट के लिए भिगो दीजिए ताकि वो ताज़ा हो जाएं। जायद नमी को नचोड़ कर निकाल लें, डंठल को काट कर हटा दें और टोपी वाले हिस्से को बारीक स्लाइसेस में काट लें। एक बर्तन में स्लाइसेस डालें और 300 मिलीलीटर पानी शामिल करके ढकना ढक कर चूल्हे पर चढ़ा दीजिए।
1: जब पानी में उबाल आ जाए तो आंच कम कर दें। 15 मिनट पकाने के बाद सोया सॉस और चीनी डालकर बगैर ढके तमाम भाप खत्म होने तक पकाएं।
2: शुरू का चोटो टोरोट्टो शिते किमाशिता ने।
1: माया गाढ़ा हो चुका है। आप देख सकते हैं कि शीताके के स्लाइसेस सतह पर आ गए हैं और जायका भी बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। बर्तन को ठंडा होने के लिए छोड़ दें, जिससे शीताके स्लाइसेस को जायका जज्ब करने में मदद मिलेगी।
0: गाजर को 3 सेंटीमीटर लंबी और 2 मिलीमीटर चौड़ी पट्टियों में काट लीजिए।
1: अब एक बर्तन में 200 मिलीलीटर पानी डालें। हल्की आंच पर गाजर की पट्टियां उबालें। 5 मिनट बाद चीनी और नमक शामिल करके 5 मिनट मजीद पकाएं। चूल्हा बंद करके गाजर की पट्टियों को जायका जज्ब करने के लिए बर्तन में ही रहने दें। आइए केक के किनारे सजाने के लिए भिंडियां तैयार करते हैं। एक चुटकी नमक भिंडियों के ऊपर डालकर रगड़ें ताकि रुएं खत्म हो जाएं।
0: एक बर्तन में पानी उबालें और तैयार की गई भिंडियां नमक के साथ पकाएं। 1 मिनट के बाद उन्हें निकालकर बर्फ वाले पानी में डालकर ठंडा कर लें। पानी निकाल लें, डंठल काटकर भिंडियों को बारीक स्लाइसेस में काट लीजिए। इस तरह से हम भिंडियों के कुदरती रंग और साख्त को इस्तेमाल करते हुए उनसे सितारों की शक्ल की सजावट हासिल कर सकते हैं। अब पकाते हैं किंची तमागो, यानी बारीक बारीक कटा हुआ अंडे का क्रेप। किंची का मतलब है चमकती हुई पट्टियां और तमागो अंडे को कहते हैं। तेज जर्द रंग के अंडों की पट्टियां अक्सर त्यौहार की डिशों में इस्तेमाल की जाती हैं। एक छोटे प्याले में एक अंडा तोड़ लें, सफ़ेद झिल्ली को हटा दें जो कि सफ़ेद रेशादार उजलात हैं और अंडे की जर्दी से जुड़े होते हैं।
1: एक चुटकी नमक अंडे में डालें और अच्छी तरह फेंट लें। फ्राइंग पैन को गर्म करें। पेपर नैपकिन को इस्तेमाल करते हुए तेल की हल्की सी तह लगा दें। एक खूबसूरत क्रेप बनाने के लिए जितना मुमकिन हो उतना कम तेल इस्तेमाल करें। सबसे अहम नुक्ता फ्राइंग पैन का दर्जा हरारत है। फ्राइंग पैन का दर्जा हरारत चेक करने के लिए अंडे के आमेजे के एक कतरे को चॉपस्टिक से फ्राइंग पैन में टपकाएं और उससे आने वाली आवाज़ को सुने। अगर आवाज़ बहुत तेज हो तो किंची तमागो ब्राउन हो जाएगा और अगर कोई आवाज़ ना हो तो अंडा नहीं पकेगा। अंडे के आमेजे के कतरों से कई मर्तबा जांचें। दर्जा हरारत को मवाफिक बनाने के लिए चूल्हे को जलाएं और बुझाएं।
0: अगर आप ये आवाज सुने और अंडे का कतरा सफेद हो जाए तो दर्जा हरारत ठीक है। अब फ्राइंग पैन में तमाम आमेजा डाल दें। अगर आप छोटा फ्राइंग पैन इस्तेमाल कर रहे हों तो 2 छोटे क्रेप बनाएं।
1: अंडे के आमेजे को पूरे फ्राइंग पैन में फैला दें। फ्राइंग पैन का हैंडल पकड़कर थोड़ा सा झुकाते हुए चारों तरफ घुमाएं ताकि तमाम हिस्से पक जाएं। आंच को धीमा रखें। जब अंडे की पूरी सतह पक जाए तो चूल्हा बंद कर दें। क्रेप के नीचे एक चॉपस्टिक डालकर उसे पलट दें। पैन की हरारत पर दूसरी जानिब से पकने दें। क्रेप को निकालकर चॉपिंग बोर्ड पर रख दीजिए। अब इसे 4 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टियों में काटें और एक दूसरे के ऊपर रखें और 4 सेंटीमीटर लंबी बारीक पट्टियों में काट लें। हमवार कट हासिल करने के लिए छुरी को सीधा नीचे की जानिब खींचें।
0: तो आइए अब सुशी राइस को

0: केक की शक्ल में ढालते हैं जिसके लिए चावलों को अभी गर्म होना चाहिए। 16 से 18 सेंटीमीटर कुतर का एक गोल केक का सांचा तैयार करें। अगर आपके पास केक का सांचा नहीं है तो छोटी हांडी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको गत्ते के एक टुकड़े की भी ज़रूरत होगी ताकि चावलों को सांचे में बिठा सकें। गत्ते के टुकड़े को दायरे की शक्ल में काटें जिसकी चौड़ाई इतनी हो कि सांचे के अंदर फिट हो जाए और उस पर प्लास्टिक रैप चढ़ा दें। केक के सांचे में प्लास्टिक रैप लगाएं और अज्जा की तहें लगाना शुरू कीजिए। जो चीज़ केक के सबसे ऊपर होगी उसे पहले सांचे के पेंदे में डालिए।
1: आधे सफ़ेद चावल सांचे के अंदर डालें। चावल को बराबर से फैला दीजिए। गत्ते के दायरे को इस्तेमाल करते हुए चावलों को नीचे दबाएं। इससे केक की सतह हमवार हो जाएगी। उसके बाद शीता के मशरूम के स्लाइसेस से जायद पानी निकालकर उन्हें केक की पूरी सतह पर फैला दीजिए। अगली तह बाकी बचे हुए सफ़ेद सुशी राइस की होगी, जिसे गत्ते के दायरे से नीचे दबाएं। फिर गाजर की पट्टियों से जायद पानी निकालें और उन्हें बराबर से फैला दें। तिलों वाले सुशी राइस शामिल करें और अपना वजन डालते हुए जोर से गत्ते के दायरे से दबाएं।
2: 寿司ケーキの土台はこの型に入れたまま持っていきましょう。
1: パーティーに出て行く時、寿司ケーキ三つ目に入れて、ビンディオンのスライスとキンチ卵をダッポに入れて、自分の持ち込む前にスモークサーモンをグラブの花の形にして。
0: サーモンのスライスを長さの半分に切って、それを8グラブの形にします。हर टुकड़े को चॉपस्टिक के गिर्द लपेटकर गुलाब के फूल की साख्त बना लीजिए। जब गुलाब के फूल बन जाए तो चॉपस्टिक निकाल लें। इसके बाद हम मायोनीज तैयार करेंगे। एक छोटी प्लास्टिक की थैली में 2 या 3 खाने के चम्मच मायोनीज डालें। थैली के मुंह को रबड़ बैंड से बांध दें। बाद में जब केक को सजाना हो तो थैली के नीचे के एक कोने को काट लें और दबाकर बाहर निकालें।
1: जब आप पार्टी में पहुंच जाएं तो एक प्लेट में केक को उलट दीजिए। सबसे ऊपर किंची तमागो छिड़क दें। मायोनीज की थैली को एक कोने से 5 मिलीमीटर काटें और दबा कर बाहर निकालें। केक के बालाई किनारे पर गोल घुमाते हुए लगा दीजिए। सितारों की शक्ल की भिंडियां मायोनीज पर तरतीब से लगाकर सामन केक गुलाबों से सजा दीजिए। लीजिए, सुशी केक तैयार है।
2: 持ち寄りのパーティー料理には持ち運ぶときに崩れず、時間が経っても美味しいものが
1: ポトラックパーティーの料理は、ディッシュが موجود ہوتی ہیں جو کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی اپنی ساخت اور ذائقہ برقرار رکھیں۔ بچے اور بڑے دونوں ہی سوشی کیک سے لطف اندوز ہوں گے۔ خوبصورتی سے سجا کر سب کو حیران کر دیجیے۔
0: اور سامعین، اب وقت ہوا ہے کیچ آف دا ڈے سیگمنٹ کا۔ آج ہم بات کریں گے مختلف اقسام کی اوشی زوشی یا دبائی ہوئی سوشی کا۔ تو صوفیہ، سوشی کے لفظ سے آپ کے دماغ میں کون سا تصور آتا ہے؟
1: گل، میرے دماغ میں جو ایک آتا ہے کچی مچھلی کا ٹکڑا اور اس ایک لقمے کے برابر سوشی رائس کے ساتھ۔
0: اسے نگیری زوشی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ماکی زوشی یعنی سوشی رول، اور چیراشی زوشی یعنی جس کے اوپر کئی اقسام کے اجزاء سجے ہوتے ہیں بھی ہوتی ہے، لیکن آج ہم جو سوشی کیک بنا رہے ہیں وہ اوشی زوشی کی ایک قسم ہے۔
1: اس قسم کی سوشی میں سرکے والے چاولوں اور مچھلی کو ایک سانچے میں ڈال کر دبا دیا جاتا ہے۔
0: اوشی زوشی کی تاریخ نگیری زوشی یا ماکی زوشی سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ جاپان کے مختلف علاقوں کی اپنی منفرد اوشی زوشی ہے جو اس علاقے کی خصوصیات کی عکاسی کرتی ہے۔ بحیرہ جاپان کے کنارے واقع تویاما پریفیکچر کے لوگ ماسو زوشی بناتے ہیں، جو نمک اور سرکے کے ذائقے والی ٹراؤٹ مچھلی اور سوشی رائس سے بنائی جاتی ہے۔ بانس کے پتوں کو لکڑی کے ایک ڈبے میں رکھتے ہیں، ٹراؤٹ اور چاولوں کو اس سے ڈھک دیا جاتا ہے۔ ڈبے پر وزن رکھ کر سختی سے دبایا جاتا ہے۔ کھانے سے پہلے آپ بانس کے پتوں کو اتار لیں اور بانس کی خوشبو سے لطف اندوز ہوں جو کہ چاولوں میں بس جاتی ہے۔ جاپان کا قدیم دارالحکومت نارا اپنی کاکی نو ہازوشی کی وجہ سے جانا جاتا ہے، جو سرکے والے چاولوں پر نمک والی مچھلی کے باریک سلائس رکھ کر ایک مستطیل سانچے میں مضبوطی سے دبا کر بنائی جاتی ہے۔ और उन्हें छोटे टुकड़ों में काटकर जापानी फल के पत्तों में लपेट दिया जाता है। हिरोशिमा प्रिफेक्चर के की काकु सुशी भी कई तहों पर मुश्तमिल सख्ती से दबाई गई सुशी की एक किस्म है, जिसे रंग बिरंगी सजावट मसलन देम्बू यानी गुलाबी रंग के मछली के फ्लेक्स, शीता के मशरूम और किंची तमागों से सजाया जाता है।
1: गुल, इसका मतलब है कि हम जापान के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर कई अकसाम की ओशी जुशी से लुत्फानंदोज हो सकते हैं।
0: समय अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम जापानी खाने पकाएं। हमें उम्मीद है कि आप आइंदा भी हमारे साथ होंगे। वाह जनाब, क्या खूबसूरत केक लग रहा है तस्वीर में।
1: वैसे कुल ये तो आप भी बनाकर लोगों पर अपने सुगड़ा पे ये खूब धाक बैठा सकते हैं।
0: वैसे आपने भी तस्वीरें दिखाई है। अच्छा, कभी मौका हुआ तो जरूर कोशिश भी करेंगे।
1: बिल्कुल।
0: अभी तो ये बताएं कि अगर सामयिन सुशी केक बनाना चाहें और उन्हें शीता के मशरूम ही ना मिले तो फिर वो क्या करेंगे?
1: कोई बात नहीं, कोई सा भी मशरूम मिले, मसलन बटन मशरूम वगैरह, तो उन्हें आज के प्रोग्राम में बताई हुई तरकीब से तैयार कर लें। शीता के मशरूम क्योंकि खुश्क होते हैं इसीलिए इन्हें पानी में भिगोया जाता है। फ्रेश या टिन पैक वाले मशरूम के लिए ऐसा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
0: चलिए, ये मसला तो हो गया हल। अब ये बताएं कि वो गुलाब कैसे बनाएंगे?
1: ये बड़ा मसला है।
0: जो स्मोक सामन से तैयार किए गए हैं, क्योंकि सामन मछली तो अक्सर मिल भी जाती है लेकिन स्मोक्ड सामन मिलना जरा मुश्किल होता है।
1: जी, जोर किस पे हुआ, स्मोक सामन पे।
0: जी हाँ।
1: मैंने भी काफी सोचा कि क्या किया जाए।
0: अच्छा,
1: तो एक बात समझ में आई कि क्यों ना हम इस तरकीब में तैयार की गई गाजर की पट्टियों से गुलाब बना लें, जिसके लिए हमें आधी की जगह पूरी गाजर इस्तेमाल करनी होगी। और गाजर वाली तह में किसी सफेद मछली के स्लाइसेस को सोया सॉस, चीनी और नमक में पकाकर बिछा दें।
0: वाह, भी क्या आइडिया है, आप तो पाकिस्तान की आखी को वतनाबे बन गई है।
1: जरा नवाजिश आपकी।
0: तो सामिन, थोड़ी सी रद्दबदल के साथ आप भी पार्टी सुशी केक बना कर ले जाएं और खूब दाद वसूल करें।
1: और हाँ, घर पर बच्चों के साथ मिलकर भी जरूर बनाएं।
3: ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। ये नशरियात पाकिस्तान में रात 9 बजे और भारत में रात 9:30 पर शॉर्ट वेव्स 9440 किलोहर्ट्ज़ पर सुनी जा सकती हैं। इंटरनेट पर आप हमारे प्रोग्राम nhk.jp/urdu पर सुन सकते हैं।
1: जी सामिन, प्रोग्राम आपने सुना, पसंद तो आया होगा और आइडिया भी बड़ा मुनफरिद लगा होगा, सुशी केक। वैसे सुशी अब हमारे मुल्कों में भी काफी आम होती जा रही है। पाकिस्तान के बड़े शहरों में भी काफी सुशी रेस्टोरेंट बन गए हैं और अब ड्रामों में भी अक्सर सुशी खाते दिखाया जाता है। मैं भी जब पाकिस्तान गई तो सुशी रेस्टोरेंट जाने का इत्तफाक हुआ। दिलचस्प बात ये कि मिसाल के तौर पर अमेरिका में मकबूल कैलिफोर्निया रोल की तरह तरमीम शुदा सुशी की जगह बिल्कुल जापान में दस्तियाब टिकिया नुमा कच्ची मछली के कतलों से बनी सुशी हमने वहाँ खाई और मेरी बेटी का तो खुशी से कोई ठिकाना ही नहीं था कि पाकिस्तान में बैठकर अपनी पसंदीदा सुशी मिल गई। तो आप लोग भी अपने इलाके में दस्तियाब अज्जा से हमारी तरकीब के मुताबिक सुशी केक बनाएं और किसी पॉटलक पार्टी में लेकर जाएं और खूब दाद वसूल करें और हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। और इसके लिए हमारा पता नोट कर लीजिए, nhk.jp/urdu। पता एक बार फिर नोट कर लें, nhk.jp/urdu। और अब हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।